उठो नहीं, लेटे रहो, जो भी हुआ, लेकिन तुम यहाँ बिल्कुल सुरक्षित हो, लेटे रहो।

देख रही हूँ, मेरे लोग उस लड़के को आज नहीं तो कल ढूंढ लेंगे। तेरे लिए बेहतर है कि तू खुद बता दे। तेरी यही खामोशी तेरी सबसे बड़ी दुश्मन बनेगी। मैं तुझे उठाकर उसी जगह वापस भेज दूंगा जहां से खरीद कर लाया था एक दिन। तेरी सही जगह वही है, वहां आशिकों की कमी नहीं पड़ेगी तुझे। एक ढूंढेगी हजार मिलेंगे, और वो सब मिलके तेरा इतनी बार इस्तेमाल करेंगे कि दोबारा किसी और से इश्क करने के लायक नहीं रहेगी तू। आज से तू उसी दिन का इंतजार कर।

मैं अल्लाह से कह रही थी कि तुम्हारे अंदर ईमान जगाए, तुम्हें नास्तिक से आस्तिक बनाए। चाहे तुम उसे जिस तरह जिस शक्ल में मानो, मगर मानो जरूर। मैं तो ये चाहती हूँ कि हम दोनों मरने के बाद भी मिले जन्नत में, और जन्नत में वही लोग मिलते हैं जो खुदा को मानते हैं।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग,
3: 89.6 पे
0: रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
2: गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभातम, सत श्री अकाल। दोस्तों वक्त हो चुका है 10 बज चुके हैं। इस वक्त आप मेरे साथ टून करें 89.6 रेडियो DS गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 32 डिग्री सेल्सियस और दोस्तों वक्त हो चुका है आपके मनपसंद कार्यक्रम हेलो फरमाइश।

0: हेलो
1: जी, नाम बताएं सर।
0: आयुष शर्मा।
1: आयुष शर्मा जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: गंगापुर सिटी से।
1: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
0: तू जाने ना।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर, आपकी फरमाइश का
0: बैठ। चला सर,

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं।
1: मैं सिंह हरियाणवी चला रहा हूँ।
0: आपका नाम बताएं सर।
1: दीपक मीणा।
0: दीपक जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: गंगापुर से। गंगापुर से।
0: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: देसी हरियाणवी।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर, आपकी फरमाइश का।

0: रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS
1: शहर का नया मैजिक, रेडियो DS 89.6।
3: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो DS गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें, 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें, 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
1: शहर का नया मैजिक, रेडियो DS 89.6।

0: नमस्ते।
1: नमस्ते सर, नाम बताएं आपका।
0: हाँ जी, ठंडे राम गुजर बोल रहा हूँ, गांव बजर क्या से।
1: ठंडे राम जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो से आप।
0: सर गाना वो है हाथों में आ गया रुमाल आपका।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं ठंडे राम जी आपकी फरमाइश का। इस
2: तेरी पहली निशानी अच्छा है, ये मेरे दिल के इतना करीब रहेगा जितना तेरा ख्याल।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं सर।
1: चौधरी निवेदन कर रहा हूँ सिंह।
0: चौधरी जी, बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: गाना सर सुपरहिट लाइन में
0: बताएं सर।
1: कभी वे बसी ने मारा,
0: बिल्कुल सुना रहा हूँ सर आपकी फरमाइश पे।

0: हेलो, हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: सेना।
0: कहाँ से बात कर रही हो?
1: गंगापुर सिटी संजय कॉलोनी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे मैम?
1: इश्क मुबारक।
0: सुना है आपकी फरमाइश करिएगा।

0: हाँ जी सर, नमस्ते।
1: नमस्ते मैम।
0: सर नाम क्या है आपका?
1: नाम रूपचंद गोयल, जिला बाड़मेर राजस्थान।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
1: मैम आज ही सुना लगन पिक्चर का।
0: लगन
1: का? बारिश नहीं हो रही है, इंद्र भगवान से प्रार्थना करते हैं और ये गीत है काले मेघा पानी तो बरसाओ।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।
1: थैंक यू।
0: यू वेलकम।

0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: हर बीट में है शहर का कमाल डीएस 89.6 शहर की धुन।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: रेडियो DS
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: हेलो।
3: हाँ नमस्ते दीदी।
2: सर नमस्ते, सर नाम क्या है आपका?
3: मेरा नाम गंगाधर सावनकर।
2: कहाँ से बात कर रहे सर?
3: मैं कुंडलवाड़ी नांदेड़ महाराष्ट्र से।
2: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
3: मदद करो संतोषी माता, संतोषी माता फिल्म का है।
2: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर। ये गाना रेडियो DS में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: लक्ष्य सैनी।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: गंगापुर सिटी से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: 80 लाख।
1: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगा

0: आपकी फरमाइश करिएगा ना। कहाँ से बात कर रहे हो?
1: राधे की।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
1: वो लम्हे वो बातें को
0: सुना रहे हैं, आपकी फरमाइश करिएगा।

0: हेलो
1: हेलो बहन जी, नमस्कार जी।
0: नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
1: नाम तुलसीराम मीना, ग्राम पीलू खेड़ा से।
0: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: सर मेरा नाम है आई मिलन की रात और गाने के बोल है सावन का महीना आया है घटा से बरसा है पानी।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश, करिएगा ना रेडियो।
1: धन्यवाद बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो मैम, नमस्ते।
0: नमस्ते, नाम क्या है आपका?
1: मेरा नाम विनीता मीना है।
0: कहाँ से बात कर रहे हो विनीता जी?
1: गंगापुर सिटी से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: जन्म खून के बालक।
0: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: हेलो हेलो हेलो,
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे? सही
2: ख्याल ख्याल
1: ओके सर।

0: हेलो।
1: हेलो
0: हाँ जी मैम, क्या है आपका?
1: जी, योगेश जांगड़े पे मैं पूरा छत्तीसगढ़ से
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
1: आएगा मजा बरसात का फिल्म अंदाज से।
0: वो कैसा सुना रहे हैं, आपकी फरमाइश कर लेना।
1: धन्यवाद।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: टिप्पर होगा गाना।
1: नाम क्या है आपका?
0: टिप्पर।
1: नाम आपका?
0: बिट्टू।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: गंगापुर सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: मासूम शर्मा का तुम मेरे घंटा पाड़ोगे।
1: ओके।

0: अभिषेक राजपूत।
1: कहाँ से बात कर रहे
0: हैं? नागपुर सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: बदमाश पक्का, अमन राज गिल का।
1: ओके सर।
2: काली वो गाड़ी रखे काले से शीशे उसके, रोहतक के जाट कॉलेज में।

0: ड्रग्स की।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग।
3: 89.6 पे
2: रेडियो DS 89।
4: हेलो।
5: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
4: सुशीला।
5: कहाँ से बात कर रहे हो?
4: करौली फाटक।
5: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
4: उड़ उड़ रहे मारा धोला कबूतर, खबर तो लार गोरा की।
5: वो कैसा सुना रहे हैं आपके फरमाइश पर? हेलो।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
6: हर बीट में है शहर का कमाल। DS 89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग।
3: 89.6 पे
2: रेडियो DS 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
6: हर बीट में है शहर का कमाल। DS 89.6 शहर की धुन।
2: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

0: हेलो।
1: हाँ जी मैम, क्या बात है?
0: मेरा नाम नगीना बानो मैम।
1: कहाँ से बात कर रही?
0: कोटा।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
0: मैम मेरे फ्रेंड की शादी है, मुझे ये वाला गाना सुना दीजिए, बनो तेरी खुशियाँ सुर में जाए।
1: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।
0: ठीक है मैम, आप शादी में आना मैम जरूर।
1: ओके मैम जरूर।

0: हर बीट में है शहर का कमाल DS 89.6 शहर की धुन
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर
0: हर बीट में है शहर का कमाल DS 89.6
2: ओए सब ठीक ठाक चिट्ठियाँ लिखना तो तुझे याद ही नहीं रहता वैसे आज 11 फरवरी है तुझे याद भी है इस तारीख को क्या हुआ था

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: हाँ जी, नाम
2: हेलो
1: आपका?
2: नदीना।
1: कहाँ से बात कर रहे?
2: गंगापुर सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
2: रान चावे।
1: ओके मैम, सुना रहे आपकी फरमाइश करिए गाना।

0: हेलो
1: जी, नाम क्या है आपका?
0: प्रीति सैनी।
1: कहाँ से बात कर रहे
0: हो? नानकपुर सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: तेरी तमजोल वाला है, तेरे बेस्ट वाला है।
1: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करें।

0: कॉल करोगे
1: क्या?
0: कितनी बार कॉल करोगे? जी, नाम क्या है आपका?
2: निकिता।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
2: रेलवे स्टेशन।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
2: रात में ढिंग छिक लड़ गई।
0: ओके मैम, सुना।

0: मेरी दिन चक लड़ गई, रात मेरी दिन चक लड़ गई, रात मेरी दिन चक लड़ गई, रात मेरी दिन चक लड़ गई, रात मेरी
1: हेलो
2: बीएस रेडियो गंगापुर राजस्थान जी।
1: हाँ सर, सत श्री अकाल सर।
2: सत श्री अकाल पलक शर्मा बेटा जी, प्यार सत्कार भरी सत श्री अकाल भाई।
1: हाँ जी सर, आपका नाम क्या है?
2: मैं सर बेटा जी पिंड माउड़ खुर्द जिले बठिंडा पंजाब तो जगजीत मट्टू बोल रहा जी।
1: हाँ जी सर, और कौन से गाना सुनना चाहोगे?
2: गीत बेटा एक पुरानी फिल्म है शोर।
1: हाँ जी,
2: उसके बोल है जी पानी रे पानी तेरा रंग कैसा बेटा।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: ठीक है बेटा जी, अपने बड़े सर मीना जी को मेरी सत श्री अकाल बुला देना बेटा।
1: हाँ जी सर, मैं बोल दूंगी।
2: ठीक है बेटा, सत श्री अकाल बेटा, सत श्री अकाल।

0: हेलो मैम।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: रोहित मीना।
1: कहाँ से बात कर रहे?
0: गंगापुर से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: उस घर में खुशहाली आए जिस घर में तुम्हारी शादी है।
1: ओके, तो सुना आपकी फरमाइश करिएगा ना। रेडियो में कॉल करने के लिए बहुत धन्यवाद।

0: हेलो
1: जी, नाम क्या है आपका?
0: सविता।
1: कौन से बात कर रही? कौन सा गाना सुनना चाहोगी? कौन सा?
0: पैरों में बंधन है।
1: ओके, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करिएगा।

0: दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे

0: मेरा नाम लतीफ मोहम्मद रीना, कश्मीर सोना मराठ।
1: ओ सर, कश्मीर में कैसी बारिश हो रही है?
0: नहीं, बारिश तो नहीं हो रही है, अभी यहाँ पे गर्मी है।
1: खेती क्यारी किस चीज की चल रही है इस टाइम पर?
0: बस बहुत अच्छी चल रही है सर।
1: क्या बोल दिया सर? मैं आपको वो किसे सुना रहे हैं, आपकी फरमाइश करिएगा ना, ज्यादा सुना है आपको। हाँ। सेब है, बहुत ज्यादा बनता है,
0: नाशपाती है, बहुत। हाँ जी,
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
0: आज मोहम्मद रफी की आवाज में सुनाइए, पत्थर की सनम।
1: पत्थर की सनम, तो किसा सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करिएगा ना। रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपका भी धन्यवाद।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: उमाशंकर पटेल।
1: कहाँ से बात कर रहे सर?
0: भोपाल से बोल रहा हूँ, भोपाल मध्य प्रदेश से।
1: हाँ जी सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: खून भरी मांग का है ना सर, मैम वो जीने के बहाने लाखों हैं, जीना तो तुझे आया ही नहीं।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर। ये गाना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी
1: वेलकम।

0: पत्थर के सनम। हेलो
1: हेलो।
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: कोमल।
0: कहाँ से बात करो?
1: गंगापुर सिटी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहो?
1: चूड़ी बजी है कहीं दूर छन छन।

0: हेलो
1: हेलो मैम।
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: मेरा मीना।
0: कहाँ से बात कर रही
1: हूँ? गंगापुर सिटी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: भोलेनाथ का।
0: कौन सा?
1: भोलेनाथ का संगीत।
0: ओके, सुना।

0: हेलो
1: हेलो।
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: पिंकी।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: क्या
0: कहाँ से बात कर रहे?
1: रेलवे स्टेशन का गाना सुन।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: लेरियो।
0: लेरियो?
1: हाँ, न्यू सॉन्ग है लेरियो।
0: ओके मैम, सुना रही हूँ आपकी फरमाइश करेगा।

0: बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
1: DS साइंस एकेडमी, वेयर योर ड्रीम्स टर्न इनटू रियलिटी। 12th बोर्ड साइंस 2026 शानदार नतीजे। टॉपर मानस शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया। हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी। हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेरा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर्ग, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावर और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र। एग्जाम कोई भी हो, डीएस के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं। अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की। एडमिशन ओपन सेशन 2026-27 क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम। डीएस साइंस एकेडमी, FCI गोडाउन रोड, गंगापुर सिटी, नियर सैनिक नगर एंड नसिया कॉलोनी। संपर्क करें 8005598377, इसके अलावा 9983413111।
2: हेलो
3: मैम, क्या
2: मैम, मेरा नाम लव्यांश गोयल।
3: कहाँ से बात कर रहे हैं?
2: गंगापुर सिटी से।
3: कौन से गाना सुनना चाहोगी?
2: वो लोफर से, हरियाणा से।
3: वो किसे सुना रहे हैं आपको? फरमाइश करिएगा।

0: हेलो
1: हाँ जी मैम, क्या आपको
0: सोनू
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: गंगापुर सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: मासूम शर्मा।
1: ओके सर, तुम्हारे आपकी फरमाइश करेगा।

0: मेरा नाम बिल्कुल सैनी।
1: कहाँ से बात कर रही? कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
0: मासूम शर्मा का।

0: हेलो हेलो,
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते, नाम क्या है आपका?
1: फराज।
0: कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: गंगापुर सिटी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?

तो वक्त चुका है 12:18 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाइश। दोस्तों मिलते हैं थोड़ी ही देर बाद 1 बजे नहीं तराने कार्यक्रम के साथ।

गुड आफ्टरनून दोस्तों। दोस्तों वक्त हो चुका है, एक बज चुके हैं। इस वक्त आप मेरे साथ टोन कर 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 34 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों भी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम हेलो फरमाइश। अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे कार्यक्रम नहीं तरह 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग,
3: 89.6 पे।
4: ओ, मैं तो शौकी हो गया।
2: 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
2: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर।
5: ने सोचा है कि हमारी यह पृथ्वी हकीकत में आखिर किस चीज से बनी है और यह सौर मंडल में किस चीज पर टिकी हुई है? आज हम जिस ठोस जमीन पर चल रहे हैं उसके ठीक नीचे क्या हो सकता है? दोस्तों, आज के इस टेक्नोलॉजी के युग में अगर हम इंसान पृथ्वी से 5 करोड़ किलोमीटर दूर मंगल ग्रह पर जा सकते हैं, तो पृथ्वी के आर पार बाहर निकलने के लिए मात्र 12,000 किलोमीटर जाना है। इसके लिए पृथ्वी का सबसे गहरा खड्डा वैज्ञानिकों द्वारा खोदा गया है, जिसका नाम है कोला सुपर डीप बोर होल। इसकी गहराई 12 किलोमीटर है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि वैज्ञानिकों ने इस गड्ढे को मात्र 12 किलोमीटर ही क्यों खोदा? और जैसा कि हम जानते हैं, इस तरह के सवाल आप सभी लोगों के मन में अक्सर उठते ही रहते हैं, लेकिन कभी भी आपको इस बारे में सही जवाब नहीं मिल पाता है, क्योंकि हम सब ने अपने जन्म से लेकर आज तक इस धरती के बाहर की चीजें, जैसे कि ऊंचे ऊंचे पहाड़, सुंदर सुंदर झरने और तेजी से बहती हुई नदियों का ही अनुभव किया है, और हम ऐसे जरा सा भी अंदाजा नहीं लगा सकते कि जो धरती ऊपर से इतनी सुंदर और मनमोहक दिखती है, वह असल में अंदर से कैसी होगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को इस पृथ्वी के बिल्कुल नीचे ले जाने वाले हैं और पता लगाएंगे कि आप जितना नीचे जाते जाओगे, उतना नीचे आपको क्या कुछ देखने को मिल सकता है। हमारी पृथ्वी के अंदर के भाग को पूरे 4 लेयर में डिवाइड किया गया है, जिसे क्रश लेयर, मेंटल लेयर, आउटर लेयर और इनर कोर कहा जाता है। दोस्तों, इनमें सबसे ऊपरी लेयर यानी कि क्रस्ट लेयर है, जिस पर हम सब रहते हैं। यहाँ तक कि पृथ्वी का सबसे गहरा खड्डा भी इसी लेयर में मौजूद है, जिसका नाम है कोला सुपर डीप बोर होल। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो हम आपको बता दें कि कुछ साल पहले वैज्ञानिकों ने रूस में दुनिया का सबसे गहरा गड्ढा खोदने का प्लान तैयार किया था। रूस में खोदे गए इस खड्डे की गहराई लगभग 12 किलोमीटर है और यह गड्ढा पृथ्वी के ऊपरी भाग में यानी कि क्रस्ट लेयर में ही समाप्त हो जाता है, और इस पर वैज्ञानिकों ने पूरे 20 साल तक काम किया, यानी कि पृथ्वी को सिर्फ और सिर्फ 12 किलोमीटर तक ही खोदा गया है। बताया जाता है कि जब वैज्ञानिक यह गड्ढा खोद रहे थे और जैसे जैसे यह होल गहरा होता गया, वैसे वैसे ही पृथ्वी के अंदर का तापमान बढ़ता हुआ नोट किया गया, और यह तापमान करीब 360 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया था, और जिसके कारण वैज्ञानिकों के सारे उपकरण पिघलने लगे, जिससे इस गड्ढे को और गहरा करने में वैज्ञानिक नाकामयाब हो गए। दोस्तों, इस होल की और ज्यादा खुदाई करने के मत में कुछ वैज्ञानिक पहले से ही अपनी सहमति दे चुके थे। उनका मानना था कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र भी पृथ्वी के सेंटर पॉइंट से ही उत्पन्न होता है। अगर पृथ्वी के आर पार होल कर दिया गया तो हो सकता है कि पृथ्वी पर बनने वाला यह चुंबकीय क्षेत्र कहीं नष्ट ना हो जाए, और पृथ्वी का अपना चुंबकीय क्षेत्र खो देने से क्या हो सकता है, इस विनाश के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। जैसा कि दोस्तों हमने जाना कि पृथ्वी का जो यह क्रस्ट वाला भाग है, यह पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है जो उस ठोस सतह को बनाती है, जिस पर हम सभी एक साथ सालों से रह रहे हैं, जो कि इस धरती में मौजूद बाकी परतों की तुलना में काफी ज्यादा पतली है। साथियों, महाद्वीपों के नीचे इसकी औसत मोटाई लगभग 35 किलोमीटर यानी कि 22 मील से भी ज्यादा है, और समुद्र के नीचे लगभग 5 से 10 किलोमीटर यानी कि 3 से 6 मील तक होती है। इसका टेम्परेचर 500 से 1000 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। धरती पर आने वाले भूकंप और महाद्वीपों में होने वाली हलचल के पीछे यही लेयर जिम्मेदार है। लेकिन अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यह महाद्वीपीय और समुद्री क्रस्ट क्या है? तो दोस्तों, पहला है ओशियन क्रस्ट, जिस पर समुद्र है, और दूसरा है महाद्वीपीय।

0: चला दो यार।
1: सही है सही है।
2: भूकंप और महाद्वीपों में होने वाली हलचल के पीछे यही लेयर जिम्मेदार है। लेकिन अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यह महाद्वीपीय और समुद्री क्रस्ट क्या है। तो दोस्तों, पहला है ओशियन क्रस्ट, जिस पर समुद्र है, और दूसरा है महाद्वीपीय क्रस्ट, जिस पर पूरे ठोस भाग यानी कि धरातल बना हुआ है। दोस्तों, महाद्वीपीय क्रस्ट ग्रेनाइट चट्टानों से बनी होती है, जो समुद्री क्रस्ट की तुलना में थोड़ी कम घनी होती है और जिसकी मोटाई भी काफी ज्यादा रहती है। और ये महाद्वीपीय परत काफी पुरानी है, यानी कि अरबों साल पुरानी। वहीं समुद्री क्रस्ट की बात की जाए तो यह लगभग 7 किलोमीटर तक पतली होती है। और यह महासागरीय क्रस्ट की तुलना में काफी नई क्रस्ट है, जिसे आप अक्सर ज्वालामुखी जैसी गतिविधियों में समुद्र के बीच की चोटियों पर लगातार बनती हुई देख सकते हैं, जो कि पृथ्वी के अंदर मौजूद टेक्टोनिक प्लेटों के खिसकने के साथ फैलती जाती है। अब इस पृथ्वी के थोड़ा और अंदर की तरफ चलते हैं, जहां क्रस्ट के नीचे की परत मौजूद है, जिसे हम मेंटल लेयर के नाम से जानते हैं। दोस्तों, मेंटल पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्रस्ट और कोर के बीच की परत होती है। यह हमारी धरती की सबसे बड़ी परत है, जो समुद्री परत के नीचे लगभग 35 किलोमीटर से लेकर 1900 किलोमीटर तक की गहराई के साथ फैली हुई है। दोस्तों, यह प्लेट टेक्टोनिक ज्वालामुखी गतिविधियां और पृथ्वी के मैग्नेटिक एरिया के साथ इसकी सतह को आकार देने वाले डायनेमिक प्रोसेस में मेंटल एक काफी जरूरी भूमिका निभाती है। अब जब यहाँ मेंटल की बात हो ही रही है, तो दोस्तों, यहाँ आप इससे रिलेटेड दो कॉन्सेप्ट्स के बारे में भी हमारा जानना बेहद जरूरी है, और वह है लिथोस्फियर और एथेनोस्फियर। बता दें कि लिथोस्फीयर सबसे ऊपरी मेंटल और क्रस्ट का एक मजबूत हिस्सा होता है। यह उन टेक्टोनिक प्लेटों में टूट गया है जो सेमी फ्यूल्ड एथेनोस्फीयर के ऊपर तैरती रहती है, और लिथोस्फीयर में क्रस्ट और मेंटल का सबसे ऊपरी हिस्सा शामिल रहता है, जो कि पर्वत श्रृंखला का निर्माण करता है। अचानक आने वाले भूकंप की वजह बनता है और हमारी इस पृथ्वी की सतह को आकार देने में भी मदद करता है। वहीं अगर एथनोस्फियर के बारे में समझें, तो यह लिथोस्फियर के नीचे मेंटल का पार्शियली पिघला हुआ एक फ्लेक्सिबल एरिया है, जो कि गर्म और सेमी फ्यूल्ड चट्टानों से बना हुआ होता है। दोस्तों, आपको बता दें कि पृथ्वी की मेंटल सतह के अंदर मौजूद जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, उनकी हलचल के लिए भी यही एथनोस्फियर जिम्मेदार होता है। अब दोस्तों, हम पृथ्वी के और अंदर जाकर इसकी सबसे आखिरी सतह पर पहुंचने की कोशिश करेंगे, जिसे हम कोर के रूप में जानते हैं। पृथ्वी की कोर हमारे प्लेनेट की सबसे गहरी और अंदरूनी परत है, जो मेंटल के ठीक नीचे ही होती है। बता दें कि यह पृथ्वी के अंदर का सबसे ज्यादा गर्म और दबाव वाला एरिया होता है, जहां का टेम्परेचर 5000 सेल्सियस से लेकर 7000 सेल्सियस तक आराम से पहुंच जाता है, जो पृथ्वी के अंदर के हलचल और मैग्नेटिक एरिया को बनाने का काम करता है। दोस्तों, पृथ्वी का यह कोर वाला हिस्सा भी बाकी हिस्सों की तरह दो पार्ट्स में बटा हुआ है, जिन्हें आउटर कोर और सॉलिड इनर कोर कहते हैं, जिसमें से आउटर कोर और सॉलिड कोर के चारों ओर फैली एक तरल पदार्थ होती है, जो मेंटल परत की सीमा से लगभग 30,000 किलोमीटर यानी कि 18,000 मील की गहराई में है, और पृथ्वी की सतह के नीचे लगभग 5,000 किलोमीटर तक फैली हुई है। जिन्हें नहीं मालूम है, तो उन्हें बता दें कि आउटर कोर और तरह लोहे और निकल धातु से बनी हुई है। इसके बाद आती है सॉलिड इनर कोर। तो दोस्तों, कोर का भाग आउटर कोर के नीचे मौजूद रहता है, जो पृथ्वी के केंद्र से लगभग 1200 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है, और इसके अंदर एक हैरानी की बात तो यह है कि इसमें इतनी भीषण गर्मी होने पर इस पर पड़ने वाले दबाव के बावजूद भी यह कोर हमेशा सॉलिड ही बनी रहती है, जो कि आउटर कोर की तरह ही पूरा लोहे और निकल धातु से बनी हुई है। तो दोस्तों, यह थी पृथ्वी के अंदर की दुनिया। लेकिन अब आप सभी लोगों के मन में एक ऐसा सवाल होगा, जो आपके माइंड में एक ही साथ आ रहा होगा, और वह यह है कि हमें इन सब बातों का पता कैसे चला? क्या साइंटिस्ट खुद गए थे पृथ्वी के नीचे तक? तो इसका जवाब है नहीं। साइंटिस्ट्स या कोई भी आज तक पृथ्वी के अंदर तक नहीं गया है, तो आखिर इस बात का पता इस तरह से लगाया गया होगा कि इस धरती के नीचे आखिर क्या मौजूद है। इसके बारे में पता लगाने के लिए साइंटिस्ट ने एक मेथड का यूज किया था, जिसे सिस्म वेव्स मेथड के तौर पर जाना जाता है। सिस्म वेव कुछ इस तरह की वाइब्रेशन होती है जो भूकंप, ज्वालामुखी के विस्फोट और जूलॉजिकल घटनाओं के दौरान बनने वाली एनर्जी की वजह ही पृथ्वी के अंदर आगे बढ़ती है, और यह वेव हमारे साइंटिस्ट को पृथ्वी के अंदरूनी हिस्से की स्टडी करने और उसे समझने में मदद करती है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर...

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो DS, 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।

वक्त हो चुका है 2:00 के। इस वक्त आप मेरे साथ टोन करें 99.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजी पलक। दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 36 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों, अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम नहे तरह ने। अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे भूली विसरी यादें कार्यक्रम 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: हर बीट में है शहर का कमाल डीएस 89.6 शहर की धुन।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है

0: तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज

दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 36 डिग्री सेल्सियस और अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरी सासू ने कार्यक्रम भूली बिसरी याद है। अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे बैक टू बैक गाने का कार्यक्रम 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: नया दिन बहुत बहुत मुबारक हो। मैं हूँ आरजी खुशी। कैसे हैं आप लोग? जैसा कि हर सुबह मैं कहती हूँ कि अपने जीवन में अगर थोड़ा सा बदलाव अगर हम हर सुबह लेकर आए तो पूरा दिन कितना बेहतर जा सकता है, पूरा हफ्ता, पूरा महीना, पूरा साल। और आज भी मैं एक ऑब्जर्व

0: देखो वैसे तो सर्दियों में ना किसी का एक्सरसाइज करने का मन करता नहीं है, लेकिन अगर सर्दियों में आपने एक प्राणायाम कर लिया ना तो आपकी हेल्थ बिल्कुल ठीक रहेगी। मैं हूँ आरजे खुशी और आपकी हेल्थ को बेहतर बनाने का एक आसान तरीका आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। जिन लोगों को सर्दियों में बहुत ज्यादा ठंड लगती है, जिनके पैर के नीचे के जो तलवे हैं वो एकदम ठंडे हो जाते हैं, और जिनको साइनस रहता है या नाक बंद हो जाती है, कफ बहुत ज्यादा रहता है, उन्हें सर्दियों में एक प्राणायाम करना चाहिए जिसका नाम है सूर्य भेदी। इसमें क्या होता है कि आपको अपनी बाई नाक को बंद करना है और दाई नाक से सांस लेनी है, बाई से छोड़नी है, बस आपको इतना ही करना है। है ना आसान, लेकिन आपको पता है इतनी इफेक्टिव होती है, आपकी पूरी बॉडी को गर्म कर देती है और अगर डायबिटीज ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है ना उसको भी ठीक कर देती है। अपना कर देखें और डिफरेंस खुद फील करें। आती हूँ थोड़ी देर में, मैं हूँ आरजे खुशी।
1: गंगापुर सिटी की धरती पर रेडियो डियर्स।

कभी कभी ना सुबह की शुरुआत होती बड़ी चिड़चिड़ वाली है, लेकिन अगर हमने अपनी प्रतिक्रिया उसके प्रति बदल दी ना तो सब कुछ बदल जाएगा। मैं हूँ आरजे खुशी। सोच कर देखिए कि अगर आप किसी चीज पे अपनी प्रतिक्रिया ही ना दें तो वो आपको इतना परेशान कर ही नहीं सकती। और सुबह को बेहतर बनाना है तो सुबह की चिक चिक जो होती है ना उससे थोड़ा सा बचने की कोशिश कीजिए। और अगर घर का हर सदस्य इस चिक चिक से बचने की कोशिश करे और अपनी शांति बनाए रखने की कोशिश करे तो पूरा घर एकदम आराम से शांति से हैप्पीली रह पाएगा, है कि नहीं? तो हम कोशिश कर सकते हैं कि जब भी हमें गुस्सा आए या जब भी हमें चिड़चिड़ होने की कोशिश करे, स्पेशली एकदम सुबह सुबह, तो हम कोशिश करें कि वहां हम अपनी कोई प्रतिक्रिया ना दें। और आप देखेंगे कि वो बात एकदम छूमंतर हो जाएगी, मतलब कि उस बात का कोई असर आप पर पड़ेगा ही नहीं। अब मुलाकात होगी कल। अभी के लिए यहाँ से निकलती हूँ, मैं हूँ आरजे खुशी। 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन।
3: दोस्तों वक्त हो चुका है 4:00, इस वक्त आप मेरे साथ टोन करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 36 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम बैक टू है गाने का, अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे कार्यक्रम राजस्थानी 89.6 रेडियो डीएस पर। दोस्तों हमारी स्टूडियो कॉलिंग लाइन चालू हो चुकी है, आप कॉल करें और अपनी फरमाइशों को दर्ज कराएं।

0: अरे माँ, देख देख तो कौन आई।
1: अरे कौन आई है, मने तो धुंधलो दिखे है।
0: अरे अरे अरे, कंचन बहन आई है सासरे सु।
1: प्रणाम करू माँ, जीवती रहे खुश रहे।
2: दोस्तों, हमारी स्टूडियो कोडिंग लाइन चालू है, आप कॉल करें, अपनी फरमाइशों को दर्ज कराएं, हम आपकी फरमाइशों को जल्दी ही पूरा करेंगे। दोस्तों, वक्त हो चुका है 4:09 का और गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 36 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम राजस्थानी 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: करता।
1: सासू ने काई पूछे?
0: अरे जीजी यूं नहीं रे, सासरा में सासू जी तारी माँ है।
1: अरे बेटी तू के पाछे नहीं जाऊं, नीरो काई कारण है की बता तो सही। माँ बटारी बात मत पूछे।

0: अरे छोरा चुप, तू चुप रह।
1: अरे माँ, आ थाने दुख सुनावे, दर्द बतावे, थाने दर्द नहीं रे, माने क्या चुप रे?
0: अरे बेटा, जोश में होश राखड़ो पड़े, पहला इन्हें पूछ ले कहीं।

0: हक लागे तो एकाउ थोड़ी पैर में बेटी पराई रहे।
1: पराई की कर रहे?
0: तू हाल नहीं समझे।
1: मारे सब समझ में आवे, मैं नहीं जाऊं।
0: अरे यूं की कर...

0: में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर,
1: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6।
2: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।

0: 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89
3: दोस्तों, वक्त हो चुका है 4:30 का। इस वक्त आप मेरे साथ टोन का 89.6 रेडियो डियास गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों, वक्त हो चुका है आपके मन पसंद कार्यक्रम हेलो फरमाइश 89.6 रेडियो डियास पर।
4: नून मैम, नाम क्या है आपका?
5: मुझे बताओ। हाउ आर यू मैम, कैसी है? तबीयत ठीक है?
4: हाँ मैम, तबीयत ठीक है।
5: अब तो आवाज सुन के अच्छी हो जानी चाहिए आपकी तबीयत।
4: थोड़ी ठीक हो जाएगी।
5: सवाई माधोपुर से बोल रहे हैं। मोनिका, गाना है मोहब्बत जो तुमसे हुई है पहली और आखिरी।
4: कुमार सानू। ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। करिए गाना।
5: शुक्रिया।

0: हेलो
1: जी, नाम क्या है आपका?
0: विमल, विमल शर्मा।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: गंगापुर सिटी मऊ कला से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
0: अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जय भवानी।
1: ओके।

0: सर।
1: सर नमस्ते, सर नाम क्या है आपका?
0: मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति श्री राधा सिटी मथुरा से वार्तालाप कर रहा हूँ। दीदी आप कैसी हैं?
1: सर मैं ठीक हूँ, और आप कैसे?
0: मैं बहुत बढ़िया हूँ, आपका आशीर्वाद है, बांके बिहारी कृपा है, सब घर परिवार में अच्छे से हैं।
1: सर कौन सा गाना सुनना चाहिए?
0: आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, एक गाना है मुखड़ा चांद का टुकड़ा।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश, और ये गाना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी। हृदय धन्यवाद, आभार, आपका दिन मंगलमय हो, सादर नमस्कार।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: मैं लकी बोल रहा हूँ।
1: कहाँ से बात कर रहे
0: हैं? जंगापुर से बिनसिया कॉलोनी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
0: कौन सा गाना बताओ, आप कौन सा गाना बजाओगे
1: सर? आपकी पसंद की चलेंगे।
0: सिद्धू मूसेवाला का चला दो।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: हेलो,
0: नाम क्या है आपका?
1: ललिता सैनी।
0: कहाँ से बात कर रहे हैं मैम?
1: बड़ी उदय से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: दीदी हमको गाना नहीं सुनना, हमको भजन सुनना है।
0: कौन सा मैम, बताइए।
1: ओ पापी मन कर ले भजन।
0: ओ पापी मने कर ले भजन।
1: हाँ, बाद में पिछताए।
0: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना रेडियो डीएस में कॉल करने।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
2: नाम क्या है आपका?
3: मोनिका।
2: कहाँ से बात कर रहे हो?
3: रेलवे कॉलोनी।
2: कौन सा गाना सुनना चाहते हो?
3: बीच बज रही है, तूने मेरी पकड़ी नहीं है, मैं सबको बोल दूँ।
2: ओके मैम, सुना रहे हैं, आपकी फरमाइश करेगा।

0: हेलो जी मैम, क्या है आपका?
1: सौरभ मीना
0: कहाँ से बात कर रहे
1: हैं? गंगावती से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: मुझे फिर भी पसंद है उसको तेरी मूवी।
0: कौन सा? थोड़े तेज बोला थोड़ा सा।
1: मुझे फिर भी पसंद है उसको तेरी मूवी।
0: ओके जी, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करिए।
2: 89.6 पे रेडियो डीएस
3: सुनते रहिए, दिल से दिल तक। 89.6 डीएस एफएम पे।

कल क्या होगा, जमाना क्या सोचेगा, ये सोचने वालों ने कभी भी इतिहास के पन्नों पे शाही के निशान नहीं छोड़े हैं। उसूलों पे जीने वाले इंसान को ही जमाना याद रखता है, फिर चाहे वो सही हो या गलत।

0: अब आया है जब माँ बाप से दूरियां, दोस्त खफा और पूरे शहर में बदनामी है। चल अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, बच सकता है तो बच परवीन। फिर कहता हूँ मोहब्बत का दूसरा नाम गुलामी है।
1: Police say the suspicious deaths of four people found in a home yesterday

ये दुनिया बड़ी जाली में परवीन, पहले कहती है इश्क की कोई जात नहीं, अब हो गया तो सारा शहर मजहब पूछता है।

0: लगे जाट नू
1: लगी तेरी तलब ये कैसी कांटों में गुलाब जैसी तेरे किए दिन ना बाद रातें मेरी ये सैलाब जैसी तस्वीर जली जो रखी संभाल देख मेरा हाल जहां जहां तूने चूमा था वही वही

0: ये दो गाड़ियां नाका तोड़ के थाने की तरफ आ रही है, सिक्योरिटी बढ़ाओ, इनको सीज करो।
1: विक्की कुर काम नहीं आ रहा। SD Music।

0: अच्छा दिस टिकट
1: यू सी मैं क्या से ना तेरे को फॉलो कर दी भाई अपन कर चाचा स्नूप नहीं यार
0: हे यो ऑफिसर लिसन आई एम फ्रॉम हियर मैन व्हाट द फक आर यू
2: गेट आउट ऑफ द कार विद योर हैंड्स अप
0: यो टू मी गेट आउट
2: ऑफ द कार आई सेड गेट आउट ऑफ द कार विद योर हैंड्स अप
1: यो डॉग
0: यो व्हाट द फक आर यू रॉन्ग मैन
2: अगेंस्ट द कार डू इट
1: ओ देखो पे होता था
3: यो जॉनी लॉ
0: टॉक नाउ मैन
2: ओ स्नैप
3: होल्ड ऑन मैन
0: यू नो हु दैट इज
3: देयर माय नेफ्यूज दे ग्रेट स्लाइड टू द साइड Let the rest of the people in.
4: It still ain't nothing but a G thing.
5: G thing.
4: G thing. I jumped out the car, let the beat bang.
6: But

0: करना काम
1: सही है। सही ओके बोल रहा है। ये पैर ले पर हो ये करूंगा मैं,
2: ये तो करूंगा मैं,
1: ये तो करूंगा।

0: यारो कुछ तो हाल सुनाओ उसकी खयामत बाओं का, वो जो सिमटते होंगे उनमें वो तो मर जाते होंगे।
1: धाड़ा न्योली वाला।

0: दीप मेरा भाई।
1: दोस्तों फिलहाल आप टून कर 99.6 रेडियो ओडियस गंगापुर सिटी का तड़का पर मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों अभी आपने सुना है लू फरमाइश कार्यक्रम, थोड़ी देर में लेकर हाजिर होऊंगा आपका मनपसंद कार्यक्रम भजन संध्या।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वर, 89.6 पे रेडियो DS, 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
3: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।

0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी।
2: हम आपके बच्चे को एक मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासित और नैतिक मूल्यों का ज्ञान उपलब्ध करवाते हैं, जिससे आपके बच्चे का समग्र विकास हो सके।
3: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल
2: आपके बच्चे को देता है स्मार्ट और गुणवत्ता शैक्षणिक व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा अध्यापन, सभी विषयों की सुसज्जित अलग अलग प्रयोगशालाएं जैसे कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए नियमित अतिरिक्त गतिविधियां जैसे संगीत, नृत्य, चित्रकला, शारीरिक विकास के लिए विद्यालय के अंदर खेल, आवागमन हेतु वाहन की समुचित व्यवस्था, सकुशल और सुरक्षित वातावरण, पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष ध्यान।
4: अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए आज ही एडमिशन करवाएं बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल।
5: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
4: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DS।

0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: हर बीट में है शहर का कमाल डीएस 89.6 शहर के।